वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोक्त ने चो कर्म कहो नानक ने चो त्यावे विण सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना।

बोलो जी वाहेगुरू। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम। भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होय सहाय। अर्जन हर गोबिंदन सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जस डठै सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरियाय करनो निध्या बताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री

दर्शन स्नान चौकिया चंड भुंग जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो दे वाहे गुरु बोलो दे सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो श्री ननकाणा साहेब ते होर गुरद्वारिया गुर धामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणियां दे मान नेताणियां दे तान नेउटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जे विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंकी

जे मुहाका करम करम पितरी दे अगै वसियाणिए पितरी चोर करे वडिए हाथ दलाल के मुसफिए करे।

0: आपे ही करना कियो कलापे ही तै धारिया देखा किता अपना धार कच्ची पक्की सारी है जो है सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मन हो विसारी है अपना हाथी अपना आपे ही का सवारी है आपे ही काज सवारी है
1: छाड़ रे मन बोरा।

चाकर लगा चाकरी जे चले खसमे पाए और मत तो सुनो अगले वजह भी कोना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए वजह को अगला मोह में पाना खाए जिसने दिता खावना तुसके ये साबास नार को कुना चले नाल खसम चले अरदास नाल खसम चले अरदास जनांग।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रीख पीख को कह न सकत केह अचल मूरत अनभउ प्रकाश।

साहि साहण गणिज त्रिपावन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत सेव रहता गुर पूरा पायो बड़ भागी लेव लागी मेदन पार सहता पै

गोरमुख पार उतारा, खोजत खोजत खोज बिचार्यो, राम नाम तत् सारा। किल बिख काटे निमख अराध्या, गुरमुख पार उतारा। हर रस पीवह पुरख ज्ञानी, सुन सुन महातृपत मन पावै, साधु अमृत बानी। रहाओ मुकत भुगत जुगत सच पाईऐ,

जाते वृथा न कोई वड्डे भाग रतन जन्म पाया करहौ कृपा कृपाला साध संग नानक गुण गावै सिमर सदा गोपाला वड्डे भाग रतन जन्म पाया करहौ कृपा कृपाला साध संग नानक गुण गावै सिमरै सदा गोपाला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचारियो राम नाम तत् सारा किलबिख काटे निमख अराध्या

निमाण्यों के मान निताण्यों के तान निओटियों की ओट निआश्रियों

गए मशक्कत काल, नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

कहो नानक करते किया बता, जो किस करना सो कर रहया। सोदर राग आसा महला पहला।

0: वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: आसा महला पहला, सुन वड्डा आखे सब कोए, केवड वड्डा डीठा होए, कीमत पाए न कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए, वड्डे मेरे साहेबा, गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता, केवड चीरा रहाओ, सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया, तोद वेण सिद्धि किने न पाईया, कर्म मिले नाही ठाक रहाईया, आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवार नहारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसर मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लग भूख, उत भूख खाए चलिय है दुख, सो क्यों विसर मेरी माए, साचा साहेब साच नाए रहाओ, साचे नाम की तिल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा न होवै घाट न जाए, ना ओह मरै न होवै सोग, देंदा रहै न चुकै भोग, गुण एहो होर नाही कोए, ना को होआ ना को होए, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करकै कीती रात, खासम बसार है ते कम जात, नानक नावै बाज सनात, राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, विनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम प्रगास, मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ, हर जन के वड़ भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृपतास है, मिल संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास, राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम, जा आहर हर जियो परे, सैल पत्थर मह जंत उपाए, ताका रिजक आगे कर धरे, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरे, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की धरे, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भाव करे, ऊडे ऊडे आवै सै कोसा, तिस पाछे बचरे शरे, तिन कवन खलावे।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दुष्ट सबे तुम काबहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो। सुखी वसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिय, सब वैरन को आज संघरिय। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उवरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तुझ जो करियो रक्षा। राख लिहो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिव जू अवतर। काल पाए कर विसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतार, सोई गुरु समझियो हमार। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर यस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताका कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कही भूपा। आंडज जेरज सेत जकीनी, उतपुज खान बहुर राच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमंड भयो शंकर अकैठा। शिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दोस्त जीते उठवा त्यो तपाता, सकल मलेश करो रण घाता। जे अस तुज तब शरणी परे, तिनके दोस्त दुखत हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्व सके न कोई।
एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उवारा जिन न

सवैया पाए गहे जावते तुमरे तावते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कहें हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां, शब्दो तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना, सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरे, घर तां तेरे सब किश है जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइयां। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियाँ इह वडियाइयां। कहे नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। बाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द बाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कुमारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे। कहे नानक तह सुख हुआ तित घर।

गुरु बोलो जी पंजां प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया बंड छकिया देख चलाई तेग वाहे देख के

ते अपराध करत है जेते। जननी चीतना राखस तेते, रा मैया हों बारक तेरा, काहे न खंडस अवगण मेरा। जे अत करोप करे का।

चिंत पवन मन परियो हमारा, नाम बिना कैसे उतर सपारा। देह विमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगुण हमारे। दया करहो किश मेहरे उपावो हो, डूब दे पत्थर तारे। जीअड़ा अगन बराबर तपे, पीतर वगे काती। प्राणवत नानक हुकम पछाणे, सुख होवे दिन राती। दर्शन प्यासी दिन सुरात, चित वो अन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत।

अमृत शाड बिख बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा से प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुने गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखहु शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखहु शरणाई सुकहु टल गुर सेवियै अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय हो सिफत खसम दी नूर और सोह कुर सोह चटिया तुद डठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पातशाह हो सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दावे साहो सजन सच्चा पातशाह सिर शाह दे जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला नावा

सगल जगत अपने सुख लागे दुख में संग ना होई रहे द्वारा मीत पूत संबंधी सागरे तन से लागे

संग शाड सब भाग्य कहा ए अमन बौरे का इन से उन्हें हो लगायो दीनानाथ सगल पै पंजना जस ताको बिसरायो स्वान पु

लाज बिरद की राख नाम तुहारा लीना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म हस्त काया रखिया परमेश्वर आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन चरण रखिया जगदीश्वराय सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाशन भगत वशल अनाथ नाथे सारण नानक पुरख अचुत है बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म सरणाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एकाल बलाई रहाओ राख लिए तिन रखण हार सब ब्याद मिटाई कहो नानक कृपा भई प्रभ भय सहाई सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिय करते का हो बिचारो तित कर गावो सोहिला सिवरे हो सृजनहारो तुम गावहो मेरे निरभाओ का सोहिला हौ वारी जित सोहले सदा सुख होए रहाओ नित नित जीअड़े समालियन देखेगा देवन हार तेरे धन कीमत ना पवै ते सदा ते कवन समार संबत साह लिखिया मिल कर पावहु तेल देहो सज्जन असीसड़िया ज्यों होवै साहिब स्यों बेल कर कर एहो पहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन राग आसा महला पहला शकरशा गुरशा उपदेश गोर गोर एको वेश अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख बढ़ाई तोए रहाओ विश्वे चस्या घड़िया पहरा थित्ती वारी माहो होआ सूरज एको रोते अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन मैथाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मलया नलो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहस तब नैन नन नैन हह तोहे काओ सहस मूरत नन एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध एव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिस दै चानण सब मह चानण होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जो तिस पावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो वंदनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देहे नानक सारंग को
ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਾਮੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਚੁਭੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵਹਿ ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਹੈ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣਹੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ ਈਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਆਉਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਜਗਾਏ ਪੀਆ ਵੈ ਇਹੋ ਰਸ ਅਕਤ ਕਥਾ ਤਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਬੇਹਜ ਹੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਹੈ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾ

मांगै मोकौ कर संतन की तोरे अंतर जामी पुरख बेदाते सरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगै मोकौ कर संतन की

को अपनी ये नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटे नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात, पढ़ी है जेते बरस बरस, पढ़ी है जेते मास, पढ़ी है जेते यार जा, पढ़ी है जेते सास, नानक लिखा एक गल और हाँ मैं चखना चाह मला पहला।
1: लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहुत ही।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पा कूड़ मियाँ कूड़ बीबी।

0: जग चलन हार, कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे पूर, नानक वखाणे बेनती खुद बाज कूड़ कूड़ मला पहला।
1: सच ता पर जानी जड़ दे सच्चा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए, सच ता पर जानी जल सच तरे पिया, नाओ सुनवर खसियता पाए मत दुआ, सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जिया, तर्त काया साथ के विच दे करता भी, सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किश्पन दान करे।

सुर नरेसुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर गन रेखो जंत फिरे। अबनासी अचल अजूनी संभो पुरखोतम अपार परे। करण कारण समरथ सदा सोई सरजी मन ते आयो। श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो। सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन तन गोबिंदियो। अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो। गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो। श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में ते।

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पब भक्त हर के जू गण अम्बरीक जय देवत लोचन नामा अवर कबीर परंग तिनको अवतार पयो कल पिंतर जस जगतर पर सायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तय हर परम पद पायो। मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तनंग बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तय।

क्रोध खंड परचंड लोभ अपमान स्यो चाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुकम जो

सतरूप सतनाम सत संतोख तरयो उरे आद पुरख पर तखे लिख्यो अक्षर मस्तक तुरे प्रगट ज्योत जगमगै तेज भूमंडल छायो पारस परस परस परस।

ब्रह्म पे पुले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई।

एहन ससहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसामंदी, नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म।

पूजा अष्टपदिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गौर सागर रतनी भरपूरे, अमृत संत चुग है नहीं दूरे, हर रस चोग चुग है प्रभ पावे, सरवर मह हंस प्राण पत पावे, गौर सागर रतनी भरपूरे, अमृत संत चुग है नहीं दूरे।

हंस मह सागर अकाथ कथा गौर बचनी आदर सोन मंडल एक जोगी वैसे नार न पुरख कहो को कैसे तेर पवन जोत रही लिव लाई सोर नर नाथ सच्चे शरणाई आनंद मूल अनाथ अधारी गोरमुख भगत सहज विचारी भगत बच्छल भय काटन हारे हम मार मिले भगतारे

जन्म पदार्थ दुविधा खोवे, आप न चीनस भ्रम भ्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, धीरज धर्म धरणी धर टेक, जात सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर के शब्द परम पौ भागै,